को मौसम घाम बरसा पानी बादल को रूपा चिरी को मौसम बरस घाम बरसा पानी बादल को रूपा।

0: Hello, and JMC. Now you are listening to Good News FM 105.1 MHz Stereo Sound, the voice of the Lord.
1: अब प्रस्तुत हुँदैछ विभिन्न अंग्रेजी वर्जन गीतहरू।